ठीक है ना, काम तो यही ऐसे ही होना चाहिए, तरीका तो यही है। एक मिनट, नाग देवता ने नॉन करा दो, एक लोटो भरने पानी नाग देवता माथे छेद दो, नाग देवता ऊपर। अब देखो जोत आगा ले, जोत रमान जाता रही पानी। हाँ, नमोस्तु सर्पेभ्यो, जय के पृथ्वी मनु, जय अंतरिक्ष, जय विदितेभ्य सर्पेभ्यो नमः, शुद्ध दक्षिणानम समर्पयामि। बस अब है थोड़ा पानी हाथ वटी ने कर दो, जो हैंग जातो रहे विद्वान जाली में। गयो सब पानी रुकियो नहीं है, ठीक है जरा भाई इत्र लगाना, बरक लगाओ भाई नाग दे, पहले इत्र बरक लगाओ, बरक लगाओ से भूलो मत, है मन सब याद है, आप भूल जाओ मन याद रही, क्यों मैं भूलू कौन सा इत्र ने बरक ने भेजान तो जरूरी है सिंगार में, बरक कट गए वो बरक वहां पर गिर गया। ये रहा, चारों तरफ से इन्हें शिवलिंग रम आते, आगे आगे हमें मेन हम अल्लाह बोर्ड सामने चिपना चाहिए बरक, और बरक तैयार है समा करना, खोल न दू आपने आप गिल्ला आता क्या चिकना खोल न दू, ता भरो लगा वाला रुई कन्ना ले लो, आप हाथ गिल्ला नहीं चाहिए जला दिया हमारा, मारे भी कही एक्चुअल में वो विंटर महाराज लोटो भरना दिया के पंचम मारे हाल गीला गोड़ा हाथ रहे चिकनाट है हाथ में इतनी की कर, आनंद आयोग नहीं विशेष रहा अबे आरती बाकी है, सिंगार करियो बस, हाल सिंगार बाकी है बस आरती करो, महाराज ने बुला दो आरती में, महाराज रातू करा दो आरती, रुई ले लो वासुदेव, आप दो जना रुई ले लो, जूर बरक लगाए खट रुई यूं पुश करना, रगड़नी नहीं है, देख यूं पुश करनी है, रुई रगड़े पाच उतर जाएगा बरक, पहले साहब हम लमलो पूरा पोर्शन कर दीजो क्लियर, न पचे लारू लाल लो पचे लगे जो। ओम व्रियस्य मेय, ओम गौसो नादय गौसो प्रचदाम बरुगा वरुगंधसे सोमवतु मदाय वदाय रसो वचुद, ओम रजत पत्रम ओपनयामि नमः। हाँ तो चिपचे आप तो बे जी को चिपियो जी तो रुयू रुयू आयु दबाओ, हमल हमल पोर्शन पूरा क्लियर करो सा, लारू पचे लगे जो हमल हमल साहब जटी ने उबा गया साहब अटी हमल हमल पूरा क्लियर करो आप पहला, क्यों बड़े गीत तो नहीं है पूरा लिंग मात आ जाए पहले हम लोग सब पूरा कवर भी जाना चाहिए, आप बिल्कुल एजी एजी ने हित में उबा गए वो क्लियर कर दो, आया जी ने उब भैया ने पूछा देखो हम उब ए बता सके, निरी है वो बरक तो इनमें खूब आवे बड़ पानी उगे ये पाछ उकल जाए कैमरा सही है यार अभी, अरे लो उच्चो लो उच्चो लो इन्हें इन्हें उच्चो लो रुयू रुयू, अरे साहब रुई नहीं आप, हाँ यू रुयू पकड़ो, अरे बटी नहीं नहीं आगे लगाओ, आगे लगाओ साहब आगे लगाओ, नारे लगाओ हिम्मत हमें हमें लगाओ, देखो हमें बाकी है नहीं तो पोर्शन हमें लगो ला पूरा क्लियर करो, नारे तो कोई बात को नहीं हमें हमें लागना जरूरी है, रेड बंद कर दो, दो मिनट
जल बंद कर दो मिनट, कोई रुकने साधन देता हूं। दो मिनट बंद कर दो, नहीं सर सिंगार दो जी, तो बता चुका हाँ लगा दो, ने रोक दो मिनट जल ना, क्यों है सिंगार हो नहीं तो बैंड बैंड बाज जाएगा। बस ये गया, बाकी वजह हैंग लगा दीजो। अब रुई साहब और रुई दबाओ नहीं आप, मैं देखो बर्क लगाया आप हाँ सर। अबे चंदन है, आप चंदन की कटोरी ले लो और ओम बना बना माता है, पतला पतला एकदम गोचाऊ, और चंदन रख कटोरी पड़ी इन, आपने गोचो तैयार करने दू इन गोच के ओंगली लगा बन जाए ओम, और त्रिपुंड हाँ त्रिपुंड बनाओ सा बरगा बोल ओके, ये पानी जड़ तक बंद नहीं बहनी सा, जड़ तक अपना काम सकते सिंगार वालों नहीं बहला। ऊपर पानी इन्हें बंद करना पड़ी, आया था यज्ञ पवित्र वस्त्र को वस्त्र पहला चंद शिवलिंग ओम यज्ञ पवित्र सजम पुरस्ताद आयुष्य मुग्रम प्रति मंच शुभ्रम यज्ञ पवित्र बलमस्तु तेज कोपी न वस्त्र कोपी नस्त्रिंग साम सदा से देवता भी नमा वस्त्रम वस्त्रम समर्पयामि सुजात हो जो नीचे कर दो सेब बोले हाँ ठीक है सुजात हो ज्योति पचे सुजात हो ज्योति का सर्म अवरुधमा सदत वासो मैं भी बावसो वस्त्रोर वस्त्रम समर्पयामि वस्त्रोर वस्त्रांत चंदन ने टिक्की लगा दिया। आप बिल पत्र लो, बिल पत्र ने श्रृंगार देवना दो जिन्होंने बुलाओ आपका बिल पत्र एक एक बिल पत्र लालू तोड़ तोड़ ने देवणी ऐसे ही चला एक ऐसी का डोंगला है क्या यू तोड़ प्रो न पद सड़ा नियम है जिको भी कोई वे दूजना सही जल आप रखना क्यों आप इकला सिंगार करवा बारे हैं बाकी गप्पा मार रहे हैं हो आप आ जाओ वो बढ़िया रहेगा ज्यादा। मैं बोले ना आज तक उन्नीस साख मैं देख तक बारह कहीं हैंग बिना गप्पा ठोक गया उबा उबा बीन पत्र दारू डोंकला तोड़ तोड़ने देवना बीन पत्र गणई है हैंगो ना दऊ हमार ओम नमो बिल बिल दौसा ओम नमो बिल बिने चो बचिने चो नमो वर्मणे चो वरुथि ने चो नमो बैठो आप रामु तोड़ तोड़ने चढ़ाओ सब मिला श्रुता ये सुश्रेना ये चो नमस लो ए टूट ऐसा डंटल ओम नमो बिल बिने चो बचिने चो नमो वर्मणे चो वरुवस हैंग ऑन बुला दो पर चढ़ा देख के बिल पत्र डंटल टूट है चढ़ाओ आप तैयार है भाई नमो बिल बिने कवचने च नमो वरमेने च वरुतिने च नमः श्रुताय सुश्रेनाय और लारू जी का डोंकला वेके उबर जोड़ो ओ तोड़ ना शिवजी रमा तो 1000 बार पाछो दो दो चढ़ा सको इतो शिव ने प्रिय है बिल पत्र 1000 बार और लारू डंटल टूटोड़ो चाहिए बस लो साहब टूटोड़ो है चढ़ाओ आप हो डंडो थोड़े ना ओम नमो बिल बिने च कवचिने च नमो वरमिने च वरुथिने च नमः श्रुताय सुश्रेनाय च नमः चारों तरफ सजावण है बिल पत्र
ओम नमो बिल्विने च कवचने च नमो वर्मिणे च वरुतिने च नमः श्रुताय सुश्रेणाय च नमः दुंदुभ्याय च लारू डंडा तोड़ तोड़ सजावना है बिलपत्र श्रृंगार करना है और टूटी उड़ा है मारे तैयार करना दिया हूं तू फेंक दे ना मुझे नहीं चाहे बारह तो मिल्लर रमान है पीड़ना उचित नहीं है अब दो मिनट रमान दो मिनट में अब पर चारों तरफ बॉन्ड है बॉन्ड चारों तरफ बिलपत्र रसिंग मैं दे दी पूरा पैकेट दे दिया मैंने ये अंग्रेज ने दे जाओ और शिव जी अंग्रेजों ने दे जाओ के बिल पत्र चढ़ा अकेला मैं करूं कोई बैठा मान दिया ही कोई ओम नमो बिल्विने च कवचने च नमो वर्मिणे च वरुथिने च नमः श्रुताय सुश्रेणाय च नमः दुंदुभ्याय च अनन्याय च त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिदे त्रिजन्म पाप सम्मारम एकम बिल्वम शिवार्पणम अब नाग देवता ने बैठा टिक्की देने नाग देवता टिक्की दो चंदन दे ऊपर बैठा दो नाग देवता माते बिल नाग देवता माते बिल पत्र चढ़ावना है हाँ ऊपर बैठ बजाओ जैसा या नहीं नाग देवता विराजमान करो मुंडो में राख जो बिल्कुल सीधो गेट है क्या गेट राम में दरवाजा है दरवाजा राम में रखी हाँ बिल्कुल इन माते बिल पत्र रखो दो चार नाग देवता माते अट निरे पड़िया देखो नीचे बिल पत्र पड़िया ए भी सब सही है अबे चंदन कितना एक मिनट चंदन कितना है थोड़ी जाए यंग और लाग जाए टिक्की चर्चा लाग जाए यंग और है ठीक है चलन दो अबे चल गया बस अबे माला पहरो माला काटो इन महादेव री वह पुष्प वह खुला पुष्प थोड़ा सी पुष्पांजलि वास्ते राख दीजिए विनय कोतली में ही कोतली गई यंग ओम नाना सुगंधिम पुष्पाणि यथा कालो एक और मोटी माला है दिशा महादेव रे यथा कालो ध्वानि च माल तेज मगादि निग्राण परमेश्वर साम सदा शिवाय नमो नमः एतानि पुष्पहारम सब एक आपको पुष्प रखो बिल पत्र रमाते और एक नाग देवता रमाते दो पुस्तक ले लो जो कहलावे बुझ गया चढ़ा दो हाँ सेवंतिका बगुल चंपक पाटलाभ जय पुन्ना गजाति कर वीरल साल पुष्पे बिल्व प्रवाण तुल शीतल मंजरी भी त्वाम पूजयामि एलो चढ़ो शिवलिंग माते त्वाम पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदौ साम सदा शिवाय नमो नमः इतानि सुगंधि पुष्पाणि समर्पयामि सुगंधि पुष्पांते धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षम धूपदीप बताओ भाई चंद्रमा मनसो अगरबत्ती लगाओ पहुंचा चंद्रमा मन सो शिव जी का आरती कर पाची स्टैंड में लगा दीजिए केलर स्टैंड अट पड़ी अटकुना में अटो इनमें लगा दीजो ताकि एकदम खुशबू रहे जोरदार मारा जावे तो जीव हो रहे मेरे बढ़ने रख दो बट महादेव जल्दी आरती करो जरा कौम आ जाए बट पट्टी है काली पट्टी मात रख दो बट आगे जल्दी आरती करो जरा कौम आई धूपम आग्रह पयामी धूप दीप बताओ महादेव ने धूपम आग्रह पयामी प्रत्यक्षम दीपम दर्शयामी नमः चंद्रमा मंद सो जात सो सूर्यो जायत सोत्रद्वा युश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत धूपम आग्रापयामि प्रत्यक्षम दीपम दर्शयामि धूपाय नमः दीपाय नमः धूपम आग्रापयामि दीपम दर्शयामि धूपम दीपान्ते नैवेद्यम नैवेदयामि नैवेद्यम लो भाई एक मिनट व्यवस्थित करना एडवांस मारते सब तैयारी है तो श्रृंगार थोड़ा

वह तो तुम इन्हें गंदा पूछ ले, पजा थाली रख दे वणा चौक तो वणा और पात्र ऐसे हो रहे भोजन रहो चौकट बनाए देखो की करना कपड़ो बारू का आयो गया बाल ले जाने अट पड़ियो तो अटिन पड़ियो तो हाँ ओज अधिक काम सिद्ध है बढ़िया है तो बड़ा पटरा को तो काम थारो काम सिद्ध है सी ओ थारो तो काम सिद्ध है सब रहा बीच में बस देखियो ले जा थाली लो सा दो महादेव रे भोग रखो यू रियो मिंद पात्र रे माते हाँ अब आगे अब पुष्प मौन है रख दो प्रसाद में पुष्पे नाचाद्य घंटी बजाओ घंटी घंटी बजाओ ओम नाभ्यास इदं दैशकं श्रेष्ठोद्यौ समवर्तत बुद्ध्यां भूमृतिता सोद्रा सदा लोकामकल्पयन्तं प्राणाय स्वाहा गमानाय स्वाहा मुदानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा मध्ये घंटे नीचे रखो भगवान जी मंदवार करने यूं प्राणाय स्वाहा यूं देखो प्राणाय स्वाहा सबानाय स्वाहा मुदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा दो बार जल गुमान छोड़ो दो बार जल गुमान छोड़ो जल रहो और घंटे नीचे रख दो घंटे नीचे रखो पहला जल रहो जल घुमाओ नट छोड़ दो हाथ में ले न जल यूं हथेली में घुमाओ जल दो बार हाँ नीचे छोड़ दो जमीन माते एक बार और छोड़ो जल लेन नीचे नैवेद्य मध्य पानीयम समर्पयामि उत्तराभूषणम समर्पयामि धनुर्मुद्रा मुद्रितो ग्रास मुद्रा कृत्वा नैवेद्यम नैवेद्यामि नैवेद्यान्ते उत्तराभूषणम भगवान ने मंदमार करो पाचे के एक बार तो थोड़ा और लेवना पड़ी भगवान आवे जरा मंदमार करो के घर कोई मेहमान आवे जरा खास जो भगवान रे गए मंदमार करोगे एक बार तो लो आप थाली रमोन खाली कर दो थाली रमोन रख दो नैवेद्य मुद्रा पोषाणम समर्पयामि नमः मुद्रा पोषाणान्ते फलम समर्पयामि लो रखो या पर नीजा बना रूपाया सुपने बृहस्पति प्रसूता स्थान चंद्र कमलो दर्पण लो भाई इदं फलम मया देव कापितं पुत्र समापवेतं सुपला जमो जमो भवेदं सुप्लावाप्ति भवेदं मनिजन्मने फलं समर्पयामि नमः याः प्रदीर्जा फलापुपाया सुखेश्वर पाठना याः प्रदीर्जा फलापुपाया सुपने बृहस्पति प्रसूता स्थान मुंचन तोमसो इदं फलम है हाँ हाँ तो रख दो आप भगवान प्रसाद दे दीजिए रहेंगे मोड़ दीजिए लो इदं फलं मया देव स्थापितं पुरुषोत्तमा भवेतं सुफलावाप्तिर् भवेर्जन्मनि जन्मनि फलं समर्पयामि फलान्ते फलताम्बूलानि समर्पयामि नमः लो पुंगी फलम महावीर्यम नाग एलादि चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगयताम साम सदा शिवाय नमः इन परात में रखो नहीं फल बीजा सब इनमें जमाओ लाके कोई भोग लागू डर कह रहा हो परात में बीजा रखो जरा जमान रख जो प्रेम पूर्वक अपन न चाहूं कोई जल्दी नहीं है एक माला पड़ी हुई है के मोटी देखो पढ़ो महादेव ने जरा खुला पुस्तक वेद खुला पुस्तक काट ने जमाओ बढ़िया चारों तरफ बौन माते एक माला खोल दो वासुदेव जी ने चारों तरफ पुस्तक जमा दो पर एक माला खोल प्री ने पुस्तक जमा दो बाजर पुस्तक जमा ना पुस्तक खुला दो इनमें बॉन्ड रमाते परिधि एक अटे नहीं ऊपर परिधि यान बताओ वासुदेव जी हाँ यू जमा नाना सुगंधि पुष्पाणि यदा

सुगुणे बृहस्पति बसुतास्थान मुंचद्वगमस फलांत फलतामूलानि समर्पयामि नमः। पुंगी फलतामूलानि समर्पयामि। एलादीचूर्ण संयुक्तं तांबूलं प्रतिगयतां तांबूलानि समर्पयामि। तांबूलांत हिरण्यगर्भदक्षिणा द्रव्यम् लो भाई, आ दक्षिणा मट रख दो, हाथ लगाना है गौरी। हिरण्यगर्भ समावर्तत अग्रे भूत से जात अट प्रसाद रे ऊपर। हिरण्यगर्भ समावर्तत अग्रे भूत से जात पति रे काशी तो सदा दारो पृथ्वी ध्याम ते मांगस में देवा। एक आखो पुष्प है विषम रखे ने दी सिंह लिंग माते विषम रख पुष्प है बिल पत्र माते विषम वाला तो स्पीड गया ऊपर ऊपर सा सिंह लिंग बट बिल पत्र है ऊपर बिल पत्र ऊपर पुष्प कटा है। हाँ अट रखो और लो सब जगह चढ़ाए भाई और रख दो और लो। अब नारियल लेने बैठना है हैंगो हाथ लगाना है और एक और नारियल ले लो बैठो नीचे और मैं बोलू छू बोलना मारा लाल लार है मैं बोल रहा नीचे बैठ लो जेटे जेटे बैठा जेता स्थान बटे बटे पाचा बैठ जाओ जी जे स्थान हो जेटे जेटे वे बटे बटे बैठ जाओ और मैं बोलू छू बोलना है हाँ एक दूजा नहीं हाथ लगा बैठा जी ऊपर हाँ रामो रामो फूटे नहीं सी सी हाँ हाथ में रखो नारियल हाथ में रखना भाई एक जनो पकड़ रख लो हाथ में बाकी आएंगे हाथ लगा दो और मैं बोलू छू बोलना इन्हें डायरेक्शन नहीं पड़ता सर नारियल हाँ इन माते थोड़े चावल और पुष्प वाली पंखुड़ी रख दीजो बोलो सा पत्रम पुष्पम फलम तोयम रत्नानि विविधानि च ग्रहण अर्घ्यम मया दत्तम देहि मे वांछितम फलम रूपम देहि जयम देहि भाग्यम भगवन देहि मे पुत्र पौत्रान धनम देहि सर्वान कामाश्च देहि मे फलेन फलितम सर्वम त्रैलोकस्य चराचरम फलस्य अर्घ्य प्रदानेन सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मे मनोरथाः गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसंपत्ति पुण्योहं तव दर्शनम्। हाँ और नारियल है कैसा आप मस्तक रे हृदय लगा शिव जी रे अर्पण कर दो हैंग ऑन आगे दे दो भाई लोगों ने हृदय रे मस्तक रे लगा ने शिव जी रे कने भेंट कर दो सा के शिव आप रो मैं फल भेंट करी और भगवान ने पाचे फल प्रदान कर दे कही आपे तो भगवान को तो मांग सको ही जोगे।

महाराज आ जाए, बाद में आरती चालू करो। आरती तैयार है, लो सब एडवांस तैयार। सिर्फ एक जोत छोटी बड़ी करनी पे या पांच वाली करनी पे तो देख लो, मारता तैयारी है। हाँ चाहे, हाँ चाहे लो। आप बटागे रखो, देखो कोई घुड़ा दे नहीं, कर दे नहीं, अपना ध्यान दो। सब अगरबत्ती और पछे लगा दीजो, अगरबत्ती और कम पड़े तो पछे और लगा दीजो। आप रखने जी राखो, और देखो सर कपूर आड़े कट नहीं रखे, जिका पत्ता माता एक एक कपूर रखे, जो चार आते तो हाथ बड़ल लाग जाए ला। आरती करे ला जिनो पौन रहे पत्ता माता, आपने ध्यान रखना, क्यों मैं बोलू ला आरती हट बैठना है तो कही है कि भाई हाथ चार रख दे ला तो थाली पे जाला गर्मा गर्म तो पकड़ नहीं सके ला आरती रे। यूं एक एक चीज कपूर सिर्फ पत्ता माता रखना। हाँ सर आप ध्यान रख जो बच्चा वगैरह यूं नहीं किनारे पड़िया चार आते चेतना वो नहीं, ध्यान रखनी चाहिए एक एक कपूर। मैं जोधपुर ब्रह्मपुरी सा, आप हुकम।

देवता पुष्प घुमाने महादेव माँ चढ़ाओ सब पुष्पे देव महाराज जी दो महाराज जी दे दो हाथ में पुष्प पुष्प दे दो पुष्पे देवता अभिवंदनम आत्म कल्याणार्थ आत्मा अभिवंदनम पुष्प दे दो पंकुड़ी ये शिव जी के ऊपर अर्पण कर दीजिए महाराज आरती अब आप थाली ले महाराज जी आरती सब जिन आरती ले लो आरती ले लो निश्चरद जल्द बात जल्द आरती करनी है हाँ सर

उजल रहो, चौटा लगाओ सब जगह, पहला मूर्ति है रमाते सब, और पचे सब जी का जन समुदाय खड़ा है भैया रमाते। ले जी सर पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रतमान्या सन्नादेहना कम्मैम सचन्द्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैश्वरणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्वरणो दधातु कुबेराय वैश्वरणाय महाराजाय नमः।

ओम चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्याम पंचभिरेव च भूयते च पुनर्द्वाभ्याम यज्ञोत्तरात्मने नमो एकदन्ताय विद्महे वृक्कतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात। ओम कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो पार्वती प्रचोदयात। ओम स्वामी कार्तिक देवाय विद्महे स्कंद देवाय धीमहि तन्नो स्वामी कार्तिक प्रचोदयात। ओम नंदीश्वराय विद्महे वृषभ देवाय धीमहि तन्नो नंदीश्वर प्रचोदयात। ओम वासुकी देवाय विद्महे नागराजाय धीमहि तन्नो वासुकी प्रचोदयात। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। चरण कमलेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात् प्रभावात् प्रगति सभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै सदाशिवायेति समर्पयामि सदाशिवायेति समर्पयामि। शंभवे नमः शंभवे नमः शंभवायै।

बोलिए श्री दीप नारायण भगवान की। श्री दीप नारायण प्रार्थना के बाद विद्यालय के लघु कार्यक्रम, जब जब धरती पर अज्ञान का अंधकार छाया है तब तब द्वारकाधीश ने अवतार लिया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सज्जामि हम। मैं बुलाने जा रहा हूं तृप्ति, निकेश, संतोष, कृष्ण की बाल लीलाओं पर भजन एक गीत है उस पर नृत्य प्रस्तुत करेंगे, नटकट कान्हूड़ो। जन्म जन्म के रिश्ते लेकर सब प्राणी जग में आते हैं, यहां दोष किसी को मत देना मुरली श्याम बजाते हैं। सुंदर नृत्य बालिकाओं द्वारा।

0: भाषण निर्मला सांखला।
1: हरिओम। आज के इस कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर उपस्थित पूज्य गुरुदेव श्री महेश्वरानंद जी, प्रेमानंद जी, प्रधानाचार्य जी, प्रधान अध्यापिका जी एवं विद्यालय में उपस्थित मेरे समस्त अध्यापक व अध्यापिकाएं और मेरे भाई बहनों, मैं आपके सामने भगवान श्री कृष्ण के क्रियाकलापों पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी की मेघा छंद उस अर्धनिशा का रहस्य शायद प्रकृति के गर्भ में ही था, क्योंकि कौन जानता था कि कंस के कारागार में जन्म लेने वाले दिव्य शिशु को वंश युगों तक प्रेम के संदेशवाहक बन जाएगी। धन्य हुई होगी वह अष्टमी रोहिणी नक्षत्र एवं कृष्ण पक्ष की निशा का चंद्रोदय, जिसमें भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार शेक चक्र गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज स्वरूपा मां अवतार श्री कृष्ण के तेजोमय प्रकाश से समूचा कारागार आलोकित हो उठा। ज्ञान मार्ग में ज्ञानी बनकर गीता रच दी तो भक्ति मार्ग में प्रेम की ऐसी सरिताएं बहा दी कि उनकी ब्रह्म के महारस में स्वयं शिव व कामदेव तक निगमन हो गए। योग मार्ग योगेश्वर श्री कृष्ण कहलाए। कृष्ण का जन्म ही नहीं उनके कर्म भी दिव्य थे। ज्ञान उपासना एवं क्रम कर्म के विशद ग्रंथ गीता के उपदेशक चमत्कारिक बचपन महाभारत के रणनीतिज्ञ जैसे उनके विविध रूप आश्चर्य चकित होने वाले हैं। हर दृष्टि से संपूर्ण कृष्ण की स्त्री समान जीव स्नेह और दुष्ट हंता जैसी गहन लक्ष्य साधक अनंत लीलाएं संदेश देती हैं, जो आज महावतार के रूप में किया योग से योग मार्गियों को संतुष्ट करते हैं। कृष्ण के बखान में असंख्य सरस्वतियां भी असमर्थ हैं, क्योंकि पीताम्बर व मोर मुकुटधारी यशोदा का काना, सुदामा का मित्र, गोपियों का प्रेमी, यादवों का रक्षक, अर्जुन का सखा, रुक्मणी का परमेश्वर, राधा का प्रियतम, दुर्धर राजनीतिज्ञ आदि असंख्य रूपों में विभूषित होकर प्रेम के अनेकानेक भावों की पराकाष्ठा हुआ। यह मुरलीधर यह लीला अवतार बाल रूप में लड्डू गोपाल जी के रूप में तो राधा के संग निर्वाक संप्रदाय के आराध्य हैं, वहीं दाऊ के साथ जगन्नाथ जी के रूप में करोड़ों जनों की आस्था का केंद्र हैं, तो कहीं श्रीनाथ जी के रूप में अकेले ही विराजमान हैं। कुल मिलाकर इनका जीवन संपूर्णता का प्रतीक है। हरिओम।
0: धरती पर कंस का आतंक बढ़ गया था। उस आतंक को खत्म करने के लिए उनके भांजे के रूप में कृष्ण ने अवतार लिया था। इस कार्यक्रम में पधारे गए सभी आगंतुकों का विद्यालय परिवार हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता है। बाबूजी महाराज के आदेशानुसार जब उनका आदेश होगा तब प्रधानाचार्य जी महोदय माल्यार्पण करके उनका स्वागत करेंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मधुराष्टकम लेकर आ रहे हैं पंचम के विद्यार्थी। कर्मणीय वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, श्री कृष्ण ने गीता में हम सभी के लिए ये उपदेश दिया है। नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं मधुराष्टकम के रूप में इसे प्रस्तुत कर रहे हैं।

0: विद्यालय के नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं ने
1: जननी भाषा संस्कृत में मधुराष्टकम प्रस्तुत किया। हमारे बीच इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की एक सुंदर झांकी जो आप सभी देख रहे हैं मंच के पास है। इस इस्कॉन यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का एक लघु परिचय करने के लिए मैं मंच पर बुलाने जा रहा हूं इस संघ के सदस्य श्रीमान बजरंगी दास हस्तिनापुर से, श्रीमान ब्रज अंगी दास जी, एक बार जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए।
2: हरे कृष्णा। सब बालिका और बालिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण बलराम का सुंदर रथ महेशानंद जी आश्रम के अंदर आया है, तो इस पदयात्रा का मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन मतलब परिचय कराना चाहूँगा। ये जो रथ देख रहे हैं आप लोग बैलगाड़ी का, दो बैलगाड़ी हमारे साथ, एक भगवान का रथ है और एक इसमें रखते हैं दो बैलगाड़ी, उसमें पांच बैल हैं हमारे साथ। तो ये जो रथ है बहुत दिव्य और बड़ा अद्भुत रथ है। ये जो पदयात्रा है 1984 में द्वारिकापुरी धाम से शुरू हुई थी। द्वारिका गुजरात क्षेत्र में आता है और वहां से शुरू होकर पूरे भारत की पांच परिक्रमा हो चुकी है। पांच मतलब एक भारत का राउंड लगाना, फिर दो ऐसे करके पूरे भारत की पांच राउंड करके, और पिछले 27 सालों से पदयात्रा पूरे भारत भर में भ्रमण कर रही है। और इस पदयात्रा के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का विग्रह विराजमान है, और इस तरफ जो है कृष्ण के भैया का नाम क्या था, दाऊजी, दाऊजी के भैया कृष्ण कन्हैया, जोर से बोलिए दाऊजी के भैया, बच्चों की आवाज नहीं आ रही है, दाऊजी के भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊजी के भैया। तो ये उनके साथ में दाऊजी हैं, बलराम उनके बड़े भाई। तो ये सुंदर रहते हैं, आगे भक्ति वेदांत स्वामी जी बैठे हैं, इनका जो विग्रह देख रहे हैं। ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद इस इस्कॉन संस्था के फाउंडराचार्य हैं, ये संस्थापक। तो ये जो रथ है ये स्वामी भक्ति वेदांत ने बोला था कि ये जो रथ है गांव गांव के अंदर ले जाओ और कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, भगवत गीता का। तो ये जो पदयात्रा जो है पिछले 27 साल से भारत वर्ष में लगातार बिना रुके हुए भी ये पदयात्रा चल रही है, और ये रथ गांव गांव में जाता है और शाम को प्रोग्राम करते हैं कीर्तन भजन, और उसके बाद फिर लोगों को प्रसाद बांटते हैं और भगवत गीता पे लेक्चर देते हैं। तो ये पदयात्रा पिछले 5 महीने पहले ये पदयात्रा द्वारिका में थी, और द्वारिका से चलते चलते आज आपके ये महेशानंद आश्रम में आया है। और इस पदयात्रा के अंदर 25 भक्त हैं, सब अलग अलग प्रांतों से हैं। जैसे वो एक दो भक्त बैठे हैं हमारे सामने, कोई इसमें बॉम्बे का है, कोई इसमें सूरत का है, मैं दिल्ली हस्तिनापुर से, और इसमें देश विदेश के भी लोग हैं, विदेशी फॉरनर्स। तो इसमें 25 लोग हैं। और ये पदयात्रा इसका उद्देश्य जो है पर्पस, ये इसका उद्देश्य ये है कि भगवान श्री कृष्ण का जो संदेश है, भगवान श्री कृष्ण का संदेश क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण का संदेश भगवान ने भगवत गीता में स्वयं दिया है। तो भगवान श्री कृष्ण का संदेश यह है कि सब लोगों को मेरी भक्ति का प्रचार करो, कृष्ण भक्ति का प्रचार करो पूरे विश्व के अंदर। तो ये पदयात्रा जो है पूरे भारत वर्ष में हरि नाम का संकीर्तन प्रचार करती है, लोगों को लोगों के अंदर जो भगवत भक्ति जागृत कराती है। तो ये जो पदयात्रा है इसका ये परिचय है, और आगे ये पदयात्रा जो है चलती रहेगी। तो इसलिए आप लोग जितने भी यहाँ बालक और बालिका के स्कूल के जितने भी छात्र हैं, ये आप लोग का बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि ये जन्माष्टमी का प्रोग्राम यहाँ नहीं मनने वाला था। हम लोग दूसरे गांव है यहाँ पर जो 6 किलोमीटर है वहां पर। तो गुरुजी ने कहा, यहाँ के स्वामी जी उन्होंने बोला कि ये प्रोग्राम जो है यहाँ करिए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो जैसे भगवान की इच्छा। तो देखो आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का उत्साह देखकर हमने सोचा चलो यहाँ ही जन्माष्टमी मनानी चाहिए। तो इसलिए आप लोगों का बहुत ही बहुत सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण बलराम स्वयं रथ में बैठकर आज इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आप लोगों को दर्शन दिए, ये आपका सौभाग्य। इसलिए आज के दिन जितना हम भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की उतनी हमको कृपा मिलेगी। तो इसलिए बहुत सुंदर है कि भगवान श्री कृष्ण इस जगत में क्यों आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि दो कारण है मेरे आने के, यदा यदा ही धर्मस्या ग्लानिर्भवति भारता अभ्युक्तानाम अधर्मस्या तदात्मानं सर्जाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। तो श्री कृष्ण इस श्लोक के अंदर ये बताते हैं कि यदा यदा ही, जब और जहां भी अधर्म का क्या होता है, प्रधानता होती है और धर्म की ग्लानी होती है, तब तक मैं अवतार लेता हूं। और परित्राणाय साधुना, जो साधु हैं भगवान के भक्त हैं, उनका क्या है, मैं क्या करता हूं, उनकी रक्षा करता हूं। और दुष्कृताम, जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनको क्या करता हूं, मारता हूं। तो 5000 साल पहले दुष्ट व्यक्ति कौन था, कंस, बहुत ऐसे थे शिशुपाल, ऐसे कई राक्षस थे जो राजा कंस के अंडर में थे। तो भगवान ने इनको क्या किया, बिल्कुल सफाया कर दिया। इसलिए बहुत जरूरी है, और आज भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, तो इसलिए स्वामी जी हैं और हम ये पदयात्रा के माध्यम से कितना प्रचार कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण आ जाएं, बहुत धन्यवाद। और वैसे तो आज के दिन अवतार लिए थे, लेकिन स्वयं रथ में बैठ के ही भगवान श्री कृष्ण बलराम का रथ आया है। इसलिए जितना आज भगवान का नाम कीर्तन गुणगान किया जाए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसलिए सभी लोग एक प्रार्थना करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र, सब लोग हाथ खड़ा करके सब लोग भगवान का नाम लेंगे। देखिए भगवान के हाथ खड़े, सब लोग दोनों हाथ ऐसे खड़िए, सब लोग जितने भी बालिका भगवान के हाथ खड़े, जोर से और प्रेम से श्रद्धा के साथ बोलिए सभी लोग, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। श्री श्री कृष्ण भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो धन्यवाद आप लोगों का, हरे कृष्णा।
1: आप थे ब्रज अंगीदास जी, इस्कॉन के सदस्य। आज हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि यह सुंदर रथ, आध्यात्मिक रथ हमारे आश्रम में है। हम सभी आश्रमवासी इस्कॉन के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी की ओर से एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका हार्दिक स्वागत कराएं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में कृष्ण लीला पर एक नाटक का मंचन किया जाएगा, जिसमें वजन है अरे द्वार पालों कन्हैया से कह दो, जिसमें इस भजन में स्वर है भजन गायक श्रीमान अशोक जी चौहान का। अभिनय करेंगे कुलदीप और कक्षा चतुर्थ के बालक बालिकाएं, श्री कुलदीप और चतुर्थ के बालक बालिकाएं। दोस्ती की अनूठी मिसाल कृष्ण सुदामा, इस विषय पर मंचन, नाटक का मंचन किया जा रहा है मंच पर।
3: हेलो हेलो

0: ओम बोले श्री दीपनारायण भगवान की जय श्री देवेश्वर महादेव की जय स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय विश्व गुरु महामंडलेश्वर पंहस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव
1: की जय।

0: भगवान की जय श्री देवेश्वर महादेव की जय सर्वनादानंद जी भगवान
1: की जय
0: विश्व गुरु महामंडलेश्वर पांच स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव
1: की जय।

की जय। देवपुरी जी महादेव की जय। सद्गुरु महाराज जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडल स्वामी महाशंजी गुरुदेव की जय।

श्री दीप नारायण भगवान की। देवादिदेव देवपुरी महादेव की। सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की। अलखपुरी जी महादेव की। सत्य सनातन धर्म की।

बोली श्री दीपनारायण भगवान की जय। श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। श्री देवेश्वर महादेव की जय। विश्व गुरु श्री स्वामी माहेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री श्री देवेश्वर महादेव की जय। श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर योगिराज परमहंस श्री स्वामी माहेश्वरानंद

तस्मै शिखराय नमः शिवाय। ॐ मनरिति भस्म जलमिति भस्म है मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज्य, सूर्याय दक्षा धरनाशकाय, श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय। आगे शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज्य, सूर्याय दक्षा धरनाशकाय, कंठ में भी कर दो गले में हिया। शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज्य, सूर्याय मेष धरनाशकाय, हरिः ओम पिनाकहस्ताय सूर्याय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय, ओम यक्षस्वरूपाय जटाधरकाय पिनाकहस्ताय सनातनाय, ओम दिवाय देवाय दिगंबराय तस्मै हकाराय नमः शिवाय। ओम जलमिति भस्म अग्निरिति भस्म हरि ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थम गतो विवा अदसाय यस्मृत पुनरीकाक्षम स्वबाह्याभ्यंतरः शुचिः, यस्मृत पुनरीकाक्षम स्वबाह्याभ्यंतरः शुचिः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय विद्महे तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम भस्मांगराय नीलकंठाय महेश्वराय सदाशिवाय, सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय, मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय। गुड गुड पिनाकहस्ताय जटाधराय गुड। ओम मंदार पुष्प बहु पुष्प सुविजिताय, ये प्राण प्रतिष्ठन्तु असे प्राण क्षरन्तु च असे देवत्वमर्चाय माम हेतु च कश्चनः। हरिः ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम जलस्नानं करिष्यामि श्रीगं गणाधिपतये नमः। हरि ओम लिंगास्थानम करिष्यामि। ओम श्रीनारायण गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। हरि ओम तीन बार अस्य प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राण क्षरन्तु च अस्य देवत्वमर्चाय माम हेतु च कश्चन इति जलस्नानम करिष्यामि इति जलस्नानम करिष्यामि। ओम

ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नवनीत समुत्पन्नं सर्वसंतोषकारकं पावन यज्ञ हेतुश्च पयस्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ओम इति पञ्चामृतमयानितं पयोदधिकृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् शर्करया स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् हरिः ओम ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् हरिः ओम कामधेनु समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परं पयस्नानार्थं प्रतिगृह्यतां पावन यज्ञ हेतुश्च पयस्नानार्थं प्रतिगृह्यतां ओम सदा शिवाय नमः साम सदा शिवाय नमः एवरी टाइम कीप चैंटिंग ओम नमः शिवाय व्हाइल यू डूइंग वॉशिंग हरिम सदाशिवाय नमो नमः साम सदाशिवाय नमः ओम ब्रह्मदेवाय नमः ओम तरुपुष्परेतु समुद्भूतं सुस्वादं मधुरं मधु तेजपुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां इदं मधुस्नानं करिष्यामि शिवलिंगाय नमो नमः हरिः ओम ओम पयस्वस्तु समुद्भूतं मधुराम्लशशिप्रभं दद्यानीतमयानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां ओदो सदाशिवाय नमः ओम सदाशिवाय नमः साम्ब सदाशिवाय नमः हरि ओम पञ्चामृतमयानीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां पञ्चामृतमयानीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां हरिः ओम पञ्चामृतमयानीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां ओम हर हर महादेव नाउ वाटर ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां काशी भागीरथी सर्वतीर्थाथी जलं सन्निध्यौ कुरु ओम श्रीनारायण नमः श्री पशुपते नमः श्री गंगाधराय नमः जटाधराय नमः ओम अष्टांगलिंगाय नमः ओम सदाशिवाय नमो नमः ओम लिंगाष्टकाय नमो नमः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती पानी और ओके अब तिलक तिलक करना है भस्म का अच्छे से तिलक करके हरिः ओम चंदनं तु महत्पुण्यं पवित्रं भावनासनम् आपदं हरति नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा ओम सदा शिवाय नमः साम

0: पिनाक हस्ताय सनातनाय यक्षस्वरूपाय जटाहराय देवाय दिगाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय देवाय दिव्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय।
1: तो चावल और चावल भी लगाइए सब लौंग इलायची वस्त्र जनेऊ। ओम मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय। ओम माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पूजार्थं प्रतिगृह्यतां नानाः रत्नानि सुगंधिनि फलानि च मया दत्तानि लेपार्थं पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुगीफलं मया दत्तं नागवल्लीर्दलयुक्तं एलाचूर्णादि संयुक्तं नागवल्लीर्चूर्ण संयुक्तं समर्पयामि। क्वाइंट्स ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसु अनंत पुण्यम फलम दद शांतिम प्रेक्ष्य मे दक्षिणाम समर्पयामि साम सदा शिवाय नमो नमः। वस्त्रम ओम लोकलज्जा निवारणे मया पिपादिते लक्ष्य वस्त्रम समर्पयामि श्री नारायण साम सदा शिवाय नमः। बस अब धतूर धतूर की जगह में इसी को हम करें, इसको धतूर को स्मरण करके हरि ओम धतूर सहित पुष्पादि समर्पयामि। कान्नात कान्नात प्ररोहंती एवान दुर्वे प्रतनु सहस्त्रेण सतेन ये दुर्वाम समर्पयामि। त्रिदलम त्रिनेत्रम त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्रम शिवार्पणम त्रिजनम ग्यारह टाइम चढ़ाइए त्रिजन्मम त्रिगुणाकारम क्षत्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्र समार्पणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम क्षत्रियायुधम त्रिनेत्रम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्र समार्पणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम सत्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्रम शिवार्पणम। एवरीवन कैन पुट दिस वेरी गुड टुडे इफ समबडी हरि ही ओम क्यार हो गए इलेवन टाइम्स। अच्छा ओम माल्यादिनी सुगंधिनी तिलक लगाइए सारे भगवान को पचाए। कैन यू पास दैट थाली टू स्वामीजी। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंगजम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गमगणाधिपतये नमः। श्रीखन्नम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम बीलपेनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहताम श्री गमगणाधिपतये नमो नमः। सिंदूर भी लगा दीजिए। सिंदूरम शोभनम चैव कामदम प्रतिगृह्यताम सिंदूरम शोभनम चैव सौभाग्यम सुखवर्धनम सुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम अक्षताश्च कुंकुमाक्ता

शुभ्रा खुनाश्च निर्मला मया प्रपादिते देवतुभ्यं वासुदेव प्रतिगृहताम। थोड़ा सा लाल व्हाइट में लाल बहुत अच्छा एक बिंद लगे थी बूंद। हरि ओम सांब सदा शिवाय नमः। ओम चंदनंतु महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। हरि ओम श्री सांब सदा शिवाय नमः। समवन कैन प्ले द बेल। ओम सांब सदा शिवाय नमः। ना अगरबत्ती

0: शंकर
1: भगवान
0: जय अगरबत्ती वनस्पति रसद भूतो गंधाढ्यं गंधयुक्तं आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। इसको वन लीफ हियर एंड वाटर। वनस्पति रसद भूतो गंधाढ्यं गंधयुक्तं आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। सम वाटर हरि ओम कर्पूर गौरम कर
1: वाटर।
0: ओम ज्योतिर ज्योतिर अग्निर ज्योति स्वाहा। ओम ज्योतिर सूर्य वर्चर सूर्य स्वाहा। ओम अग्निर ज्योतिर वर्चर ज्योति स्वाहा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्घिमन गुरुवेदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरि ओम। ओम श्री परमेश्वराय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम श्री सदा शिवाय नमः।
1: They go back out. Thank you.

0: Cold water. Clean it.
1: ओम प्राच्यय नमः सिंदूर भी डालिए। ओम पश्चिमाय नमः। ओम उत्तराय नमः। उत्तर दिशे नमः। ओम दक्षिणाय नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम आग्नेय नमः। ओम वायव्ये नमः। ओम नैऋत्ये नमः। शानाय नमः। ओम भूतलाय नमः। नीचे ओम आकाशाय नमः। आकाश में बस अब फूल रख देंगे चारों दिशा में। नाउ फ्लावर, वी नीड टू हैव फ्लावर।
0: ब्रिंग इन 9 कलर्स फ्लावर्स फ्रॉम आवर गार्डन।
1: या दैट इज ऑलरेडी। हरि ओम। ओम सूर्याय नमः। ओम सोम सेता वाइट। ओम चंद्राय नमः। ओम भौमाय लाल रेड। ओम भौमाय नमः। भौमाय नमः। नाउ ग्रीन। बुम बुदाय नमः। ओम बुम बुदाय नमः। ओ येलो। ओ ब्रिम बृहस्पतये नमः। नाउ व्हाइट डायमंड कलर। ओम राम ब्रिम रौ शुक्राय नमः। नाउ ब्लैक सनी कलर। ओम शमशनेश्वराय नमः। शमशनेश्वराय नमः। नाउ ब्लू। ओ ये या ओम राम राहवे नमः। ब्राउन Oh, maybe that one like pinky style. Yeah, you got it? Okay. Yeah.
0: Where is the vokai? Where is the
1: Basma?
0: Basma.
1: There is a small katori. Where is that Basma? Bas. Om Kim Kedave Namaha. Bas. Bas. Ab Agni ko प्रज्वलित करके एक लकड़ी में रख के छोड़ देंगे उसमें। ओम चंद्रमा मनसो जात दक्षिण सूर्य अजायत श्रोता अद्वायु ब्राण समग्नि अजायत। ओम अग्ने सानिल्य गोत्र। ओम अग्ने सानिल्य गोत्र मेष ध्वज प्रामुखे मम सम्मुखो भवः। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात तक्षुर सूर्य अजायत श्रोता द्वायु प्राणस मुखारद अग्नि अजायत। बोलिए अग्नि देवता की जय। नाउ वी कैन सेट थ्री लकड़ी विथ घी थ्री स्टिक्स थ्री ओनली फर्स्ट थ्री
0: All these three ones?
1: No, no. Different, separate, yeah, okay.

0: ओम धन्वंतरवे स्वाहा। नाउ वेयर इज दैट लॉन्ग स्टिक फॉर द घी? ओ हाँ, ये घी के लिए। श्योर। ओम प्रजापते स्वाहा। पुट इन योर चेस्ट एंड व्हेन ही सेज स्वाहा। ओके, जिसको जिसको भस्म लगाना बचा है उनको भी लगा दीजिए। ओ, जो पीछे आए
1: रतन देवी सूरज देवी दोज हू जस्ट केम नाउ पुट देम टिल द बॉक्स फ्रॉम दिस एंड वेयर इज दिस थाली।

ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरुमेदेव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा। हरि ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यं नमः स्वाहा। उमा महेश्वराभ्यं नमः स्वाहा। शची पुरंदराभ्यं नमः स्वाहा। लक्ष्मी नारायणाभ्यं नमः।

ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, सर्वार्थ देवा सर्वतीर्थादि देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंदकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु नवग्रहादि देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सोदा नमस्तुते स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा, ओम ब्रह्मपुत्रिये विद्महे सरस्वतीये धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् स्वाहा, ओम महालक्ष्मीये विद्महे विष्णुपत्नीये धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा, ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुंडकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु स्वाहा, दिवाकराय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा, ओम दश दिक्पालाय नमः स्वाहा, नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम् नमः, नमः प्रकृते भद्राय देवता देवाय स्मता प्रतिष्ठाम् स्वाहा, ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमा नयति कश्चन सशक्त शोक सुभद्रिकाम काम्बिलवासिनीम् स्वाहा, एहे ब्रह्मन्द महादेवाय नमः स्वाहा, हरि ओम नीलकंठाय नमः स्वाहा, पशुपत्ये नमः स्वाहा, अघोराय नमः स्वाहा, साम्ब सदाशिवाय नमः स्वाहा, चारवेदाय नमः स्वाहा, ऋग्वेदाय नमः स्वाहा, सामवेदाय नमः स्वाहा, यजुर्वेदाय नमः स्वाहा, अथर्ववेदाय नमः स्वाहा, अठारपुराणाय नमः स्वाहा, सकल उपनिषदाय नमः स्वाहा, बद्रीनाथाय नमः स्वाहा, केदारनाथाय नमः स्वाहा, ठाकुरपुरे नमः स्वाहा, सोमनाथाय नमः स्वाहा, अमरनाथाय नमः स्वाहा, नाउ वी गोइंग थाउजेंड्स ओम स्थिराय नमः स्वाहा, ओम स्थाणवे नमः स्वाहा, ओम प्रववे नमः स्वाहा, ओम भीमाय नमः स्वाहा, ओम वरदाय नमः स्वाहा, ओम प्रभवाय नमः स्वाहा, ओम प्रवराय नमः स्वाहा, ओम वरदाय नमः स्वाहा, ओम सर्वात्मने नमः।

0: ఓం ఉన్నాయ నమః, ఓం సర్వశుభంకరాయ నమః స్వాహా, ఓం అజాయ నమః స్వాహా, ఓం బహురూపాయ నమః స్వాహా, ఓం గంధధారిణ్యే నమః స్వాహా, ఓం కర్పూరదినే నమః స్వాహా, ఊర్ధరేతసే నమః స్వాహా, ఊర్ధలింగాయ నమః స్వాహా, ఊర్ధసాయే నమః స్వాహా, నవస్థలాయ నమః స్వాహా, త్రిజటినే నమః స్వాహా, చిరవాససే నమః స్వాహా, ఓం రుద్రాయ నమః స్వాహా, ఓం సేనాపతయ నమః, ఓం విభవే నమః, ఓం అహస్రాయ నమః, ఓం నక్తసురాయ నమః స్వాహా, ఓం తిన్మగయ నమః స్వాహా, ఓం శూచవర్షాయ నమః స్వాహా, శుభచర్షాయ నమః స్వాహా, ఓ గజగ్నే నమః స్వాహా, ఓం పాణినే నమః స్వాహా, ఓం దైత్యగ్నే నమః స్వాహా, ఓం కాళాయ నమః స్వాహా, ఓం లోకదాత్రే నమః స్వాహా, ఓం గుణకారాయ నమః స్వాహా, సింహాదూలరూపాయ నమః స్వాహా, ఆర్ధచంబాపరావృత్తాయ నమః స్వాహా, కాళయోగినే నమః స్వాహా, మహానాదాయ నమః స్వాహా, ఓం సర్వకామాయ నమః స్వాహా, ఓం చతుష్పదాయ నమః స్వాహా, ఓం నిశాచరాయ నమః స్వాహా, ఓం ప్రేతచారిణే నమః స్వాహా, ఓం భూతచారిణే నమః స్వాహా, ఓం మహేశ్వరాయ నమః స్వాహా, ఓం బహుభూతాయ నమః స్వాహా, ఓం బహుధరాయ నమః స్వాహా, ఓ సునార్వే నమః స్వాహా, ఓం అమితాయ నమః స్వాహా, ఓం గతయే నమః స్వాహా, ఓం నిత్యప్రియాయ నమః స్వాహా, నిత్యనర్తనాయ నమః స్వాహా, నర్తకాయ నమః స్వాహా, సర్వలాలసాయ నమః స్వాహా, ఓం ఘోరాయ నమః స్వాహా, ఓం మహాతపసే నమః స్వాహా, ఓం పాసాయ నమః స్వాహా, ఓం నిత్యాయ నమః స్వాహా, ఓం గిరిరుహాయ నమః స్వాహా, ఓం నవసే నమః స్వాహా, ఓం సహస్రతాయ నమః స్వాహా, ఓం విజయాయ నమః స్వాహా, ఓం వ్యవసాయ నమః స్వాహా, అంతరిద్యాయ నమః స్వాహా, ఓ అతీంద్రాయ నమః స్వాహా, అఘర్ణనాయ నమః స్వాహా, ఓం ఘర్షణాత్మనే నమః స్వాహా, యగనే నమః స్వాహా, కామనాశకాయ నమః స్వాహా, దక్షగపాహాయ నమః స్వాహా, ఓం సుసహాయ నమః స్వాహా, మధ్యమాయ నమః స్వాహా, తేజపహారిణే నమః స్వాహా, బలగ్నే నమః స్వాహా, ముదితాయ నమః స్వాహా, అర్థనాయ నమః స్వాహా, అజితాయ నమః స్వాహా, అవరాయ నమః స్వాహా, గంభీరఘోషాయ నమః స్వాహా, గంభీరాయ నమః స్వాహా, గంభీరబలహానాయ నమః స్వాహా, న్యగ్నోరూపధరాయ నమః స్వాహా, న్యగ్రుధారాయ నమః స్వాహా, ఓం వృక్షకర్ణస్థిరాయ నమః స్వాహా, ఓం విభవే నమః స్వాహా, శృతిక్షణదశనాయ నమః స్వాహా, మహాకాయాయ నమః స్వాహా, మహానయాయ నమః స్వాహా, విశ్వక్ష్ణాయ నమః స్వాహా, ఓం హరయే నమః స్వాహా, యజ్ఞాయ నమః స్వాహా, సంయుగాపీఠవాహనాయ నమః స్వాహా, తీక్షణాతాపాయ నమః స్వాహా, ఓం హయర్షాయ నమః స్వాహా, సహాయాయ నమః స్వాహా, కర్మకాలవిదాయ నమః స్వాహా, విష్ణుప్రసాదితాయ నమః స్వాహా, యజ్ఞాయ నమః స్వాహా, ఓం సముద్రాయ నమః, ఓం బడముఖాయ నమః స్వాహా, ఉతాసనసాహాసాయ నమః స్వాహా, ఉతాసనసహాయాయ నమః స్వాహా, ఓ ప్రశాంతన్వి నమః స్వాహా, ఉతాసనాయ నమః స్వాహా, ఉగ్రతేజసే నమః స్వాహా, మహాతేజసే నమః స్వాహా, జన్యాయ నమః స్వాహా, బీజకాలవిదే నమః స్వాహా, ఓం జ్యోతిషాయనాయ నమః స్వాహా, ఓం సిద్ధయే నమః స్వాహా, సర్వవిగ్రహాయ నమః స్వాహా, ఓం శిఖినే నమః స్వాహా, ఓం మున్నినే నమః స్వాహా, జటినే నమః స్వాహా, జలినే నమః స్వాహా, ఓం మూర్తిజాయ నమః స్వాహా, మూర్ధజాయ నమః స్వాహా, ఓం బలినే నమః స్వాహా, బైనవినే నమః స్వాహా, ఓం పణవినే నమః స్వాహా, ఓం తాళినే నమః స్వాహా, ఓం ఖలినే నమః, ఓం కళంకకటాయ నమః స్వాహా, ఓం నక్షత్ర విగ్రహహస్తాయ నమః స్వాహా, గుణబుద్ధయ నమః స్వాహా, లలాయ నమః స్వాహా, ఓం అగమాయ నమః స్వాహా, ఓం ప్రజాపతయ నమః స్వాహా, ఓం విశ్వాహవే నమః స్వాహా, ఓం విభాగాయ నమః స్వాహా, ఓం సర్వగాయ నమః స్వాహా, అముఖాయ నమః స్వాహా, ఓం విమోచనాయ నమః స్వాహా, సురాసురాయ నమః స్వాహా, హిరణ్యకవచాయ నమః స్వాహా, మేధజతాయ నమః స్వాహా, బలచారిణే నమః स्वाहा महिचारिणे नमः स्वाहा ओम श्रुताय नमः स्वाहा ओम सूर्य तुर्यविदोनिताय नमः स्वाहा सर्वतुद्ध परिग्रहाय नमः स्वाहा सर्वतुर्य विनोदिने नमः स्वाहा व्यालरूपाय नमः स्वाहा गुहावासिने नमः स्वाहा गुहाय नमः स्वाहा मालिने नमः स्वाहा तरंगविदे नमः स्वाहा त्रिदशाय नमः स्वाहा त्रिकालरहिते नमः स्वाहा कर्म संबंध विवेचनाय नमः स्वाहा असुरेन्द्रानंदवदाय नमः स्वाहा ओम युधि शत्रु विनाशाय नमः स्वाहा सांग प्रसादाय नमः स्वाहा दुर्वासने नमः स्वाहा सर्वार्धिनिशीषाय नमः स्वाहा प्रस्कंदाय नमः स्वाहा यज्ञ विभागदे नमः स्वाहा अतुल्याय नमः स्वाहा यज्ञ विभागदाय नमः स्वाहा सर्वसवाय नमः स्वाहा सर्वचारिणी नमः स्वाहा दुर्वासे नमः स्वाहा ओम वासाय नमः स्वाहा अमराय नमः स्वाहा ओम हेमाय नमः स्वाहा ओम हेमकाराय नमः स्वाहा निष्कमाय नमः स्वाहा ओम सर्वधारिणी नमः स्वाहा धरोदत्ताय नमः स्वाहा लोहिताक्षाय नमः स्वाहा ओमाक्षाय नमः स्वाहा विजयाक्षाय नमः स्वाहा विशारदाय नमः स्वाहा सहस्राय नमः स्वाहा ओनिग्राय नमः स्वाहा ओमकर्त्रे नमः ओम सर्वपरिचरणिषाय नमः स्वाहा सर्परिचिर निवासानाय नमः स्वाहा मुख्याय नमः स्वाहा अमुख्याय नमः स्वाहा ओम देहाय नमः स्वाहा ओम कहालाय नमः स्वाहा सर्वकामदाय नमः स्वाहा सर्वकाल प्रसादाय नमः स्वाहा ओम सुबलासाय नमः स्वाहा ओम बलरूपधीते नमः स्वाहा सर्वकामवराय नमः स्वाहा ओम सर्वकाय नमः स्वाहा सर्वतोमुखाय नमः स्वाहा आकाशनिविशाय नमः स्वाहा निपातिने नमः स्वाहा अवसाय नमः स्वाहा ओम खगाय नमः स्वाहा ओम रौद्रूपाय नमः स्वाहा अंशवे नमः स्वाहा आदित्याय नमः स्वाहा बहुरश्मे नमः स्वाहा ओम सुवर्चिने नमः स्वाहा ओम वसुवेगाय नमः स्वाहा महावेगाय नमः स्वाहा मनोवेगाय नमः स्वाहा निशाचराय नमः स्वाहा सर्ववासिने नमः स्वाहा श्रेयवासिने नमः स्वाहा उपदेशकराय नमः स्वाहा ओम अकराय नमः स्वाहा ओम मुनये नमः स्वाहा आत्मनिरलोकनाय नमः स्वाहा ओम संभवाय नमः स्वाहा संमग्नाय नमः स्वाहा सहस्रदाय नमः स्वाहा ओम पक्षिणे नमः स्वाहा ओम पक्षरूपाय नमः स्वाहा अधिशिप्ताय नमः स्वाहा विषामतमये नमः स्वाहा ओम उन्मादाय नमः स्वाहा ओम मदनाय नमः स्वाहा ओम कामाय नमः स्वाहा ओम असस्ताय नमः स्वाहा ओम अर्थकाराय नमः स्वाहा ओम असये नमः ओम वामदेवाय नमः ओम वामदेवाय नमः ओम वामाय नमः स्वाहा ओम प्राचे नमः ओम स्वाहा ओम दक्षिणाय नमः ओम स्वाहा ओम वामनाय नमः स्वाहा ओम सिद्धयोगिने नमः स्वाहा ओम महर्षये नमः स्वाहा ओम सिद्धार्थाय नमः स्वाहा ओम सिद्धसाधकाय नमः स्वाहा भिक्षवे नमः स्वाहा भिक्षुरूपाय नमः स्वाहा विपणाय नमः स्वाहा मृदवे नमः स्वाहा अभयनाय नमः स्वाहा विशाखाय नमः स्वाहा षष्ठीभागाय नमः स्वाहा ओम गवापतये नमः स्वाहा भद्रहस्ताय नमः स्वाहा ओम पिनाकाय नमः स्वाहा सदाशिवाय नमः स्वाहा नाउ इन
1: 360
0: हो गया जस्ट वी फिनिश
1: yeah
0: 700 सो this is good meditation keep continuing meditation in kali yuga om biskambine namaha swaha chamustamanaaya namaha swaha vrittavittakaraaya namaha swaha taalaaya namaha swaha madave namaha swaha madukulochanaaya namaha swaha vachaspataaya namaha swaha vajasenaaya namaha swaha nityamaasira pujitaaya namaha swaha brahmachariine namaha swaha lokachariine namaha swaha sarvachariine namaha स्वाहा विचारविदे नमः स्वाहा ओम ईशानाय नमः स्वाहा ओम ईश्वराय नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा निशाचरिणे नमः स्वाहा पिनाकवृत्ते नमः स्वाहा ओम निमित्तस्थान नमः स्वाहा ओम निमित्ताय नमः स्वाहा ओम नंदये नमः स्वाहा ओम नंदिकराय नमः स्वाहा ओम हरये नमः स्वाहा ओम नंदीश्वराय नमः स्वाहा ओम नंदिने नमः स्वाहा ओम नंदाय नमः स्वाहा नंदीगवर्धनाय नमः स्वाहा ओम भागहरिणे नमः स्वाहा नियश्रे नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा पितामहाय नमः स्वाहा चतुर्मुखाय नमः स्वाहा ओम महालिंगाय नमः स्वाहा ओम चारुलिंगाय नमः स्वाहा ओम लिंगाध्यक्षाय नमः स्वाहा ओम सुराध्यक्षाय नमः स्वाहा ओम योगाध्यक्षाय नमः स्वाहा युगवहाय नमः स्वाहा बीजाध्यक्षाय नमः स्वाहा बीजकर्ते नमः स्वाहा अध्यात्मनागतनाय नमः स्वाहा बलाय नमः स्वाहा इतिहासाय नमः स्वाहा सकल्पाय नमः स्वाहा गौतमाय नमः स्वाहा निशकराय नमः स्वाहा दम्भाय नमः स्वाहा ओम अमनाय नमः स्वाहा ओम वेदम्भ्याय नमः स्वाहा ओम वैश्याय नमः स्वाहा वसकराय नमः स्वाहा कलाय नमः स्वाहा ओम लोकर्ते नमः स्वाहा ओम पशुपतये नमः स्वाहा ओम महाकर्ते नमः स्वाहा ओम अनौषधाय नमः स्वाहा ओम अक्षराय नमः स्वाहा ओम परमाय नमः स्वाहा ओम परमाय ब्राह्मणे नमः स्वाहा ओम बलवते नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम नित्ये नमः ओम अनित्ये नमः ओम शुद्धात्मने नमः स्वाहा ओम शुद्धाय नमः स्वाहा ओम मान्याय नमः स्वाहा ओम गतागताय नमः स्वाहा ओम बहुप्रसदाय नमः स्वाहा ओम सुप्रश्नाय नमः स्वाहा ओम दर्पणाय नमः स्वाहा ओम अमित्रजिते नमः स्वाहा ओम वेदकाराय नमः स्वाहा ओम मंचकाराय नमः स्वाहा ओम विदिशे नमः स्वाहा ओम समरदर्दनाय नमः स्वाहा ओम महाभिनिशाय नमः स्वाहा ओम महाघोराय नमः स्वाहा ओम वसिने नमः स्वाहा ओमकराय नमः स्वाहा अमनिज्वलाय नमः स्वाहा महाज्वलाय नमः स्वाहा ओम आदि विदुम्बाय नमः स्वाहा ओम हुताय नमः स्वाहा ओम विषे नमः स्वाहा विषाय नमः स्वाहा शंकराय नमः ओम नित्यवर्षिणे सो नमः ओम धूम्रकेताय नमः स्वाहा ओम नीलपराय नमः स्वाहा ओम आंगुलद्याय नमः स्वाहा ओम शोभनाय नमः स्वाहा ओम निवर्गाय नमः स्वाहा स्वस्तिदाताय नमः गीत है शिष्याय नमः ओम स्वतिभावाय नमः ओम भागिने नमः ओम भागकराय नमः स्वाहा ओम लघवे नमः स्वाहा उत्सन्नाय नमः स्वाहा महंकराय नमः स्वाहा महागरपराय नमः स्वाहा कृष्णवचाय नमः स्वाहा सुवर्णाय नमः स्वाहा ओम सर्वदेहिनाम इंद्रियाय नमः स्वाहा ओम महापादकाय नमः स्वाहा महाहस्ताय नमः स्वाहा महाकायाय नमः स्वाहा महायशसे नमः स्वाहा महाग्रभूमि नमः स्वाहा महामात्राय नमः स्वाहा महानेत्र्याय नमः स्वाहा निशालाय नमः स्वाहा महाकांताय नमः स्वाहा महाकर्णाय नमः स्वाहा महेष्टाय नमः स्वाहा हणवे नमः स्वाहा महाहणवे नमः स्वाहा मानसाय नमः स्वाहा महागम्भवे नमः स्वाहा महागृसाय नमः स्मरसानभाजे नमः महाभक्षे नमः ओम महेश्वराय नमः स्वाहा मरुरसकाय नमः स्वाहा अंतरात्मने नमः स्वाहा मृगालाय नमः स्वाहा ओम लंबानाय नमः स्वाहा ओम लंबिस्थोसाय नमः स्वाहा महामायाय नमः स्वाहा ओम स्वाहा मयोपदानिये नमः स्वाहा पयोनिधये नमः स्वाहा महादंताय नमः स्वाहा महाद्रष्टाय नमः स्वाहा महाजीवाय नमः स्वाहा ओम महामुखाय नमः स्वाहा महानखाय नमः स्वाहा महासुराय नमः स्वाहा महाकोशाय नमः स्वाहा महाजटाय नमः स्वाहा प्रसन्नाय नमः स्वाहा ओम प्रसादाय नमः स्वाहा ओम प्रपत्याय नमः स्वाहा गिरिसादनाय नमः स्वाहा स्नेहाय नमः स्वाहा ओम अहश्रयाय नमः स्वाहा ओम अजिताय नमः स्वाहा महामुनये नमः स्वाहा वृक्षकाराय नमः स्वाहा वृक्षकेतवे नमः स्वाहा अनलाय नमः स्वाहा बाहुबायनाय नमः स्वाहा गंडलिने नमः स्वाहा मेरुदाग्ने नमः स्वाहा मेरुधाम्ने नमः स्वाहा देवादि नमः स्वाहा देवाधिपतये नमः स्वाहा अथर्ववर्षीयाय नमः स्वाहा सामवर्षीयाय नमः स्वाहा साक्षसामिश्राय नमः स्वाहा ऋक्सहस्रामितिक्षणाय नमः स्वाहा ओम यजुपादभुजाय नमः स्वाहा ओम गुह्याय नमः स्वाहा प्रकाशाय नमः स्वाहा जंगमाय नमः स्वाहा अमोघराय नमः स्वाहा प्रसदाय नमः स्वाहा अभिज्ञाय नमः स्वाहा ओम सुदर्शनाय नमः स्वाहा ओमकराय नमः स्वाहा ओम प्रियाय नमः स्वाहा ओम सर्वाय नमः स्वाहा कनकाय नमः स्वाहा कंचन छवये नमः स्वाहा ओम नाभये नमः स्वाहा नंदीकाराय नमः स्वाहा ओम भावाय नमः स्वाहा पुष्कर स्थापते नमः स्वाहा ओम स्थिराय नमः स्वाहा द्वादशाय नमः स्वाहा ओम त्रासनाय नमः स्वाहा ओम आद्याय नमः स्वाहा ओम यज्ञाय नमः स्वाहा यज्ञ सहिताय नमः स्वाहा नक्तम नमः ओम कलये नमः स्वाहा ओम कालाय नमः, स्वाहा ओम मकराय नमः, स्वाहा ओम काल पूजिताय नमः, स्वाहा ओम सगुणाय नमः, स्वाहा ओम गुणकराय नमः, स्वाहा ओम भूत वाहन सारथे नमः, स्वाहा ओम भस्माय नमः, स्वाहा भस्म धाराय नमः, स्वाहा भस्म गोतने नमः, स्वाहा भस्म सयाय नमः, स्वाहा भस्म गोतने नमः, स्वाहा भस्म भूताय नमः, स्वाहा ओम तरवे नमः, स्वाहा ओम गणाय नमः, स्वाहा लोकपालाय नमः, स्वाहा अलोकाय नमः, स्वाहा ओमात्मने नमः, स्वाहा ओम सर्वपूजिताय नमः, स्वाहा ओम शुक्लाय नमः, स्वाहा त्रिशुकाय नमः, स्वाहा संपन्नाय नमः, स्वाहा अशुचय नमः, स्वाहा भूत निविशिताय नमः, स्वाहा ओम आश्रमासाय नमः, स्वाहा क्रियावस्थाय नमः, स्वाहा विश्वकर्मपतये नमः, ओम ओम वराय नमः, स्वाहा ओम विशाल शाखाय नमः, स्वाहा ओम प्रतिष्ठाय नमः, स्वाहा इट्स हाफ हाफ ऑफ द वे नाउ.
1: Okay. I think we will need rice more.
0: Hari Om Ambu Jalaya Namaha, Swaha Sunishchalaya Namaha, Swaha Kapilaya Namaha, Swaha Kapisaya Namaha, Swaha Suklaya Namaha, Swaha Ayuse Namaha, Swaha Om Aparaya Namaha, Swaha Om Paraya Namaha, Swaha Om Gandharvaya Namaha, स्वाहा ओम आदित्य नमः, स्वाहा तक्षरताय नमः, स्वाहा सुविज्ञाय नमः, स्वाहा सुशारदाय नमः, स्वाहा परशुधायुधाय नमः, स्वाहा ओम देवाय नमः, स्वाहा ओम सुशारदाय नमः, स्वाहा परशुधायुधाय नमः, स्वाहा ओम देवाय नमः, स्वाहा ओम अनुकारणे नमः, स्वाहा सुबान्धवाय नमः, स्वाहा तुम्बणिदाय नमः, स्वाहा महाक्रोधाय नमः, स्वाहा उर्दरेतसे नमः, स्वाहा जलेशयाय नमः, स्वाहा उग्नाय नमः, वसंकराय नमः, स्वाहा ओम वंशाय नमः, स्वाहा वंशनादानाय नमः, स्वाहा अविन्दाय नमः, स्वाहा अनिन्दिताय नमः, स्वाहा सर्वांगरूपाय नमः, स्वाहा मायाविने नमः, स्वाहा ओम सुहृदाय नमः, स्वाहा अनिलाय नमः, स्वाहा अनल्लघाय नमः, स्वाहा बंदनाय नमः, स्वाहा बंदकर्ते नमः, स्वाहा सुबंधमीजाय नमः, स्वाहा सहसारगे नमः, स्वाहा सहज्ञानरथे नमः, स्वाहा सकारमानाय नमः, स्वाहा महाद्रष्टाय नमः, स्वाहा मायायुधाय नमः, स्वाहा बहुधानिन्त्याय नमः, स्वाहा ओम सर्वाय नमः, स्वाहा ओम शंकराय नमः, स्वाहा ओम अगनाय नमः, स्वाहा ओम अमरेशाय नमः, स्वाहा ओम महादेवाय नमः, स्वाहा ओम विश्वदेवाय नमः, स्वाहा ओम सुराग्रिणे नमः, स्वाहा अहिर्भुद्याय नमः, स्वाहा अनिलाभाय नमः, स्वाहा शेखितानाय नमः, स्वाहा हविषे नमः, ओम अजय पातके नमः, स्वाहा अजय कपाते नमः, स्वाहा ओम कापिले नमः, स्वाहा त्रिशंके नमः, स्वाहा अजिताय नमः, स्वाहा ओम शिवाय नमः, स्वाहा ओम धनंतरे नमः, स्वाहा ओम धूमकेतवे नमः, स्वाहा ओम स्कंदगाय नमः, स्वाहा वैष्णवाय नमः, स्वाहा ओम धात्रे नमः, स्वाहा ओम शुक्राय नमः, स्वाहा ओम विष्णवे नमः, स्वाहा ओम मित्राय नमः, स्वाहा ओम तोष्ट्रे नमः, स्वाहा ओम ग्रीवाय नमः, स्वाहा ओम धराय नमः, स्वाहा ओम प्रभवाय नमः, स्वाहा ओम सर्वाय वाय नमः, स्वाहा सर्वगाय वायवे नमः, स्वाहा अर्थमे नमः, स्वाहा सवित्रे नमः, स्वाहा ओम रवये नमः, स्वाहा ओम संगे नमः, स्वाहा विधात्रे नमः, स्वाहा ओम मान्धात्रे नमः, स्वाहा भूतभावनाय नमः, स्वाहा ओम विभवे नमः, स्वाहा ओम बणविवाहिने नमः, स्वाहा ओम सर्वकामगुणाय नमः, स्वाहा सर्वकामगुणवाहाय नमः, स्वाहा पद्मनाभाय नमः, स्वाहा महागर्भाय नमः, स्वाहा चन्द्रवस्त्राय नमः, स्वाहा अनिलाय नमः, स्वाहा अनलाय नमः, स्वाहा बलवते नमः, स्वाहा उपशान्ताय नमः, स्वाहा पुराणाय नमः, स्वाहा पुण्यसञ्जने नमः, स्वाहा ओम ए नाम, स्वाहा कुरुकर्त्रे नमः, स्वाहा ओम कुरुवासिने नमः, स्वाहा कुरुभूताय नमः, स्वाहा ओम गुणदोषाय नमः, स्वाहा ओम सर्वासाय नमः, स्वाहा धर्मचारिणी नमः, स्वाहा सर्वेषां प्राणिनां पतये नमः, स्वाहा ओम देवादेवाय नमः, सुमुख शक्ताय नमः, स्वाहा ओम सते नमः, स्वाहा ओम असते नमः, स्वाहा ओम सर्वरत्नवियेद नमः, स्वाहा ओम कैलासगिरिवासिने नमः, स्वाहा हिमविद्नी संस्थाय नमः स्वाहा हिमबद्धी सहस्रसाय नमः स्वाहा ओम कुलहारिणे नमः स्वाहा ओम कुलकत्रे नमः स्वाहा ओम भवविद्याय नमः स्वाहा ओम बरुप्रदाय नमः स्वाहा ओम वाणिजाय नमः स्वाहा ओम वरदकिने नमः स्वाहा ओम वृक्षाय नमः स्वाहा ओम वकिलाय नमः स्वाहा ओम चंदनाय नमः स्वाहा ओम छदाय नमः स्वाहा।

0: सिद्धार्थ छन्दो व्याकरणोत्तराय नमः स्वाहा सिंहनादनाय नमः स्वाहा सिंह धर्मराष्ट्राय नमः स्वाहा सिंह गाह स्वाहा जगत्काल स्थानाय नमः स्वाहा लोकहिताय नमः स्वाहा अमतरवे नमः स्वाहा सारंजाय नमः स्वाहा नवसक्रांगाय नमः स्वाहा अमकेतुमालिनी नमः स्वाहा सवानाय नमः स्वाहा भूतालयाय नमः स्वाहा भूतपतये नमः स्वाहा अहोरात्राय नमः स्वाहा अग्निदिताय नमः स्वाहा सर्वभूतानां बाह्यत्रये नमः स्वाहा अवनिलाय नमः स्वाहा अभिभवे नमः स्वाहा भवानाय नमः स्वाहा अमोघाय नमः स्वाहा संगताय नमः स्वाहा अश्वाय नमः स्वाहा भोजनाय नमः स्वाहा प्राणधाराय नमः स्वाहा घृतमिदे नमः स्वाहा अमिताय नमः स्वाहा अमदक्षाय नमः स्वाहा सत्कृताय नमः स्वाहा युगधापिताय नमः स्वाहा गोपालाय नमः स्वाहा गोपतये नमः ओम गामाय नमः स्वाहा गोमवर्चनाय नमः स्वाहा ओम हरये नमः स्वाहा ओम हिरण्यवाय नमः स्वाहा प्रवेशिनाय नमः स्वाहा गुहालपालाय नमः स्वाहा प्रकिष्टारे नमः स्वाहा महर्षाय नमः स्वाहा जितकामाय नमः स्वाहा जितेन्द्राय नमः स्वाहा ओम गंधधराय नमः स्वाहा उषताय नमः स्वाहा 720
1: लिफ्ट
0: या नो नो वी क्रॉस्ड तपस्य शक्ताय नमः स्वाहा ओम रतये नमः स्वाहा ओम नराय नमः स्वाहा महागीताय नमः स्वाहा महानित्याय नमः स्वाहा अप्सरो गण वेत्ये शिवाय नमः स्वाहा महाकेतवे नमः स्वाहा महाधातवे नमः स्वाहा नेनक्यसुनुचारे नमः स्वाहा नेकसानुचराय नमः स्वाहा ओम चलाय नमः स्वाहा ओम आवेदनीयाय नमः स्वाहा आदेशयाय नमः स्वाहा सगंध सुखावहाय नमः स्वाहा तोरणाय नमः स्वाहा ओम तारणाय नमः स्वाहा ओम बाताय नमः स्वाहा परिधने नमः स्वाहा परिखेचराय नमः स्वाहा संयोगार्थ वर्धनाय नमः स्वाहा संयोगाय वर्धनाय नमः स्वाहा ओम विद्याय नमः स्वाहा अतिविद्याय नमः स्वाहा ओम अतिविद्याय नमः स्वाहा ओम गुणाधिकाय नमः स्वाहा ओम नित्यमात्म सहाय नमः स्वाहा देवासुरपतये नमः स्वाहा ओम पतये नमः स्वाहा ओम युक्ताय नमः स्वाहा ओम युक्तभावे नमः स्वाहा देवी सुपर्णे नमः स्वाहा असडाय नमः स्वाहा ओम सुपसाय नमः स्वाहा ओम ध्रुवाय नमः स्वाहा ओम हरिणाय नमः स्वाहा ओम हराय नमः स्वाहा आवर्तमाने भीवसे नमः स्वाहा ओम वसुश्रेष्ठाय नमः स्वाहा महापथाय नमः स्वाहा ओम शिरोमणि नमः स्वाहा सर्वलक्षण सिद्धाय नमः स्वाहा अक्षाय रथ योगिने नमः स्वाहा ओम सर्वयोगिने नमः स्वाहा महाबलाय नमः स्वाहा सामग्नाय नमः स्वाहा ओम अस्मायानाय नमः स्वाहा तीर्थदेवाय नमः स्वाहा महारथाय नमः स्वाहा निर्विजयाय नमः स्वाहा ओम जीवनाय नमः स्वाहा ओम मंत्राय नमः स्वाहा ओम मंत्राय नमः स्वाहा ओम शुभाक्षाय नमः स्वाहा बहुकर्णनाय नमः स्वाहा ओम रत्नभूताय नमः रत्नंगाय नमः स्वाहा महाबनी पाणिदेयाय नमः स्वाहा महार्णबणी पानविधे नमः स्वाहा ओम मूलाय नमः स्वाहा ओम विशलाय नमः स्वाहा ओम अमृताय नमः स्वाहा ओम व्यक्त्याय नमः स्वाहा ओम तपोनिधे नमः स्वाहा ओम आरोहराय नमः स्वाहा आधिरोहाय नमः स्वाहा शीलधारिणे नमः स्वाहा ओम महायसने नमः स्वाहा ओम सेनाकल्पाय नमः स्वाहा ओम महाकल्पाय नमः स्वाहा ओम योगाय नमः स्वाहा ओम योगकराय नमः स्वाहा ओम हरये नमः स्वाहा ओम युगरूपाय नमः स्वाहा ओम महारूपाय नमः ओम स्वाहा महानगनाय नमः स्वाहा ओम महानागनाहाय नमः स्वाहा ओम बधाय नमः ओम स्वाहा महानागगणाय नमः स्वाहा ओम न्याय निर्वाणाय नमः स्वाहा ओम मातपदाय नमः स्वाहा ओम पादाय नमः स्वाहा ओम पंडिताय नमः स्वाहा ओम अचलोपदाय नमः स्वाहा बहुमालाय नमः स्वाहा महामालाय नमः स्वाहा शशिनी हरसुलोचनाय नमः स्वाहा ओम विस्ताराय लवणाय कृपाय नमः स्वाहा ओम त्रियुगाय नमः स्वाहा ओम सफलदयाय नमः स्वाहा अप्रतिलोचनाय नमः स्वाहा विष्णवे नमः स्वाहा मणिसिद्धाय नमः स्वाहा ओम जटाधराय नमः स्वाहा ओम बिंदवे नमः स्वाहा ओम विसर्गाय नमः स्वाहा सुमुखाय नमः स्वाहा ओम सराय नमः स्वाहा ओम सारुभूताय नमः स्वाहा ओम सर्वायुधाय नमः स्वाहा ओम सहायाय नमः स्वाहा निवेदनाय नमः स्वाहा सुखाजाताय नमः स्वाहा सुगंधाराय नमः स्वाहा महाधनुषे नमः स्वाहा गंध पालिने

नमः स्वाहा ओम शंकराय नमः स्वाहा उत्थानाय नमः स्वाहा उमंथनाय बाहुबलये नमः स्वाहा मंधाननाय बहुल बावे नमः स्वाहा ओम सकलाय नमः स्वाहा सर्वलोचनाय नमः स्वाहा तलस्तालाय नमः स्वाहा करस्थालिने नमः स्वाहा ऊर्ध्वसमह नाननाय नमः स्वाहा ओम महते नमः स्वाहा ओम छत्राय नमः स्वाहा सुछत्राय नमः स्वाहा वीरव्यातलकाय नमः स्वाहा सर्वाक्षताय क्रमाय नमः स्वाहा ओम मुन्नाय नमः स्वाहा ओम विरूपाय नमः स्वाहा ओम विकृताय नमः स्वाहा ओम दंडिने नमः स्वाहा ओम कुन्निने नमः स्वाहा विकुर्णवणाय नमः स्वाहा अरिहेच्छाय नमः ओम कुंभाय नमः स्वाहा ओम ककुभाय नमः स्वाहा ओम वज्रिणे नमः स्वाहा ओम शतविजाय नमः स्वाहा सहस्रपादे नमः स्वाहा सहस्र सुभद्रे नमः स्वाहा ओम देवेन्द्रराय सर्वदेव मापाय नमः स्वाहा ओम गुरवे नमः स्वाहा ओम सहस्रभावे नमः स्वाहा ओम सर्वांगाय नमः स्वाहा ओम शरण्याय नमः स्वाहा ओम सर्वलोककृते नमः स्वाहा ओम पैत्राय नमः स्वाहा त्रिककुळे मत्राय नमः स्वाहा कनिष्ठाय नमः स्वाहा कृष्णपिंगलाय नमः स्वाहा ब्रह्मदंड विनिर्माताय नमः स्वाहा शतग्नि वास शक्तिमे नमः स्वाहा पद्मगर्भाय नमः स्वाहा महागर्भाय नमः स्वाहा ब्रह्मगर्भाय नमः स्वाहा ओम जलोद्भवाय नमः स्वाहा गवस्ते नमः स्वाहा ब्रह्मकृते नमः स्वाहा ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा ब्रह्माविदे नमः स्वाहा ओम ब्राह्मणाय नमः स्वाहा ओम गतये नमः स्वाहा अनंत रूपाय नमः स्वाहा ओम नैकात्मने नमः स्वाहा ओ स्वयंभू तिग्म तेजसे नमः स्वाहा ऊर्ध्वगामद्मे नमः स्वाहा उपस्पदे नमः स्वाहा बातहराय नमः स्वाहा मनोजवाय नमः स्वाहा चंदनीये नमः स्वाहा चंदनीने नमः स्वाहा पद्मनालग्राय नमः स्वाहा सुरम्य भूतरणाय नमः स्वाहा ओम नराय नमः स्वाहा कणिकार महास्रग्विणे नमः स्वाहा ओम नीलमौलये नमः स्वाहा ओ पिनाकधृते नमः स्वाहा उमापतये नमः स्वाहा उमाकांताय नमः स्वाहा जाह्वविभृते नमः स्वाहा उमाधवाय नमः स्वाहा ओम बाराय बाराय नमः स्वाहा ओम वरदाय नमः स्वाहा ओम वरेण्याय नमः स्वाहा ओम सुमहास्वाय नमः स्वाहा महाप्रसादाय नमः स्वाहा दमनाय नमः स्वाहा शत्रुघ्ने नमः स्वाहा श्वेतपिंगलाय नमः स्वाहा प्रीतात्मने नमः स्वाहा परमात्मने नमः स्वाहा प्रयात्मने नमः स्वाहा प्रधानधृते नमः स्वाहा सर्वपार्श्वमुखाय नमः स्वाहा ओम त्रास्ख्याय नमः स्वाहा धर्मसाधने नमः ओम धर्मसाधारणोपराय जन्मः स्वाहा चराचरात्मे नमः स्वाहा सूक्ष्मात्मने नमः स्वाहा अमृताय गोगविशेश्वराय नमः स्वाहा शारदस्याय नमः स्वाहा ओम वसुरादित्याय नमः स्वाहा विश्वदवस्ये नमः स्वाहा विश्वते सवितामृताय नमः स्वाहा ओम व्यासाय नमः स्वाहा ओम स्वर्गाय शृंगोपाय विस्ताराय नमः स्वाहा पर्यायोनराय नमः स्वाहा ओम ऋतये नमः स्वाहा ओम संवत्सराय नमः स्वाहा ओम मासाय नमः स्वाहा ओम पाक्ष्याय नमः स्वाहा ओम शंका समनाय नमः स्वाहा ओम कलाभ्यो नमः स्वाहा काष्ठाभ्यो नमः स्वाहा लवेभ्यो नमः स्वाहा मातृभ्यो नमः स्वाहा मुहूर्ताभ्य क्षेपाश्यो नमः स्वाहा ओम वणशिभ्यो नमः स्वाहा क्षणभ्यो नमः स्वाहा विषम क्षेत्राय नमः स्वाहा 920 ओम विश्व क्षेत्राय नमः स्वाहा प्रजा विजाय नमः स्वाहा ओम लिंगाय नमः स्वाहा आद्याय निर्गमाय नमः स्वाहा ओम सते नमः स्वाहा ओम असते नमः स्वाहा ओम व्यक्ताय नमः स्वाहा ओम अव्यक्ताय नमः स्वाहा पित्रे नमः स्वाहा मात्रे नमः स्वाहा ओम पितामहाय नमः स्वाहा स्वर्गद्वाराय नमः स्वाहा प्रजाद्वाराय नमः स्वाहा मोक्षद्वाराय नमः स्वाहा त्रिविष्टापाय नमः स्वाहा निर्वाणाय नमः स्वाहा ओम राधनाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्मलोकाय नमः स्वाहा ओम पराय गत्ये नमः स्वाहा ओम देवासुर विनिमात्रे नमः स्वाहा देवासुर परायणाय नमः स्वाहा ओम देवासुर गुरुवे नमः स्वाहा ओम देवाय नमः स्वाहा देवासुर नमस्कृताय नमः स्वाहा देवासुर महामात्राय नमः स्वाहा देवासुर गणाक्षत्राय नमः स्वाहा देवासुर गणाध्यक्षाय नमः स्वाहा देवासुर गणैकृत्ये नमः स्वाहा देवी देवताय नमः स्वाहा देवादि देवताय नमः स्वाहा देवर्षये नमः स्वाहा देवासुर वरप्रदाय नमः

स्वाहा देवासुरेश्वराय नमः, स्वाहा ओमिश्वराय नमः, स्वाहा ओमिश्वाय नमः, स्वाहा देवासुर महेश्वराय नमः, ओम सर्वदेवी मयाय नमः, स्वाहा अंजिन्याय नमः, स्वाहा देवतात्मने नमः, स्वाहा आत्मसमवाय नमः, स्वाहा उद्यमे नमः, स्वाहा त्रिविक्रमाय नमः, स्वाहा ओमेदाय नमः, स्वाहा विरजाय नमः, स्वाहा नीरजाय नमः, स्वाहा अमराय नमः, स्वाहा इडाय नमः, स्वाहा ओमहस्तीश्वराय नमः, स्वाहा बेग्राय नमः, स्वाहा देवसीमाय नमः, स्वाहा नरऋषभाय नमः, स्वाहा विबुधाय नमः, स्वाहा अग्नबराय नमः, स्वाहा सूक्ष्माय नमः, स्वाहा सर्वदेवाय नमः, स्वाहा तपोमाय नमः, स्वाहा ओम सुक्ताय नमः, स्वाहा सुयुक्ताय नमः, स्वाहा शिवनाय नमः, स्वाहा वज्रिणे नमः, स्वाहा प्रसन्न प्रभाय नमः, स्वाहा अभिवाय नमः, स्वाहा जी ओम शिवनाय नमः, स्वाहा वज्रिणे नमः, स्वाहा प्रसन्न प्रभाय नमः, स्वाहा ओम निसर्गाय नमः, स्वाहा ओम पवित्राय नमः, स्वाहा सर्व पावनाय नमः, स्वाहा ओम श्रृंगिणे नमः, स्वाहा ओम श्रृंगिणे नमः, स्वाहा ओम गृहाय नमः, स्वाहा अव्याय नमः, स्वाहा प्रसन्न प्रभाय नमः, स्वाहा वज्रिणे नमः, स्वाहा शिवनाय नमः, स्वाहा ओम कांताय नमः, ओम निजाय सर्गाय नमः, स्वाहा ओम पवित्राय नमः, स्वाहा सर्व पावनाय नमः, स्वाहा ओम श्रृंगिणे नमः, स्वाहा ओम श्रृंगप्रियाय नमः, स्वाहा प्रभुजे नमः, स्वाहा राजराजाय नमः, स्वाहा निराजायाय नमः, स्वाहा अभिराय नमः, स्वाहा अभिरामाय नमः, स्वाहा सुरगणाय नमः, स्वाहा विरामाय नमः, स्वाहा सर्वसाधनाय नमः, स्वाहा ललाटाक्षराय नमः, स्वाहा विश्वदेवाय नमः, स्वाहा हरिणाय नमः, स्वाहा ब्रह्मवर्चसामाय नमः, स्वाहा स्थावरणाम नमः, स्वाहा स्थानपतये नमः, स्वाहा स्थावरणाम पतये नमः, स्वाहा नियमेन्द्रिय वर्धनाय नमः, स्वाहा सिद्धार्थाय नमः, स्वाहा सिद्धभूतार्थाय नमः, स्वाहा अंचित्याय नमः, स्वाहा सत्यव्रताय नमः, स्वाहा शुचये नमः, स्वाहा व्रताधिपाय नमः, स्वाहा ओम परस्परे नमः, स्वाहा ओम ब्राह्मणे नमः, स्वाहा ओम भक्तानां पुरयाय गतवे नमः, स्वाहा ओम विमुक्ताय नमः, स्वाहा ओम मुक्ततेशसे नमः, स्वाहा ओम श्रीमते नमः, स्वाहा श्रीवर्धनाय नमः, स्वाहा ओम जगतपतये नमः, स्वाहा इति शिव सहस्त्र नामावली शिवार्पणम् स्वाहा। हर हर महादेव। शिव जी के 11 1008 तो शिव जी को करके फिर करते हैं। बचा है, बचा, वेट वेट है। तो 11 टाइम्स वी एवरीवन चैंट ओम नमः शिवाय स्वाहा टुगेदर। ओके, ओम नमः

स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। तो खड़ा होके पूर्ण आहुति देंगे कंप्लीटली। नाउ एवरीवन स्टैंड अप एंड दिस इज द फाइनल सेक्रीफाइस एंड हवन। ये पूरा है, ये तो यही है, यही है। नहीं यही ठीक है, इसी को धारण लगाता हूँ। हरि ओम।

0: Otro.
1: Aquí.
0: Tu bacha hua gira dijiye. Whatever left over, we going to offer now. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudakshyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Sarvavai Purnaha Swaha Sarvavai Purnaha Swaha Sarvavai Purnaha Swaha Om Baso Pavitramasi Baso Pavitrena Sahastradharena Devastva Punatu Savita Baso Om Shanti Shanti Shanti तो फिर ये हाथ में लगाइए हरि ओम दो हाथ में लगा के अग्नि में दिखाएंगे ओम बलमसी बलमहि देहि मन्युमसी मन्युमहि देहि साहोसी साहोमहि देहि तेजोसी तेजोमहि देहि वीर्यमसी वीर्यमहि देहि ओजोसी ओजोमहि देहि मन्युमसी मन्युमहि देहि ओम शांतिः शांतिः शांतिः द फाइनल पीस प्रेयर ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगो शान्ति हि शान्ति रापा शान्तिरो सधय

0: ॐ असतो मा सद्गमया तमसो मा मृत्युर्मा लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिओम। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णुपाददकं भित्वा पुनर्जन्म न विद्यते चन्दनं तु महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदं हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। जय बोलिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को जय। सांब सदा शिव जी को जय। बोलिए प्यार से गणपति भगवान को जय। पशुपति नाथ को जय। सदा शिव को जय। चारो वेद को जय। महालक्ष्मी महासरस्वती को जय। चारो वेद को जय। सत्य सनातन धर्म को जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर महेश्वरानंद स्वामी जी को जय। हरि ओम।
1: पंडित जी धन्यवाद।
0: हरि ओम। थैंक यू वेरी मच।
1: एवरीवन डू योरसेल्फ, टेक योर फिंगर एंड लाइक दिस एंड मेक तिलक। ओके
0: दे शुड डिप देयर सम। वी पुट लिटिल घी।

आप हो, नित्य चेतन निराकारी है। पापी अनेकों आगे उभारिया, अब के मेरी बारी है। मुझ पर मेहर करो मेरे दाता, मांगत भी कभी क्यारी है।

0: जी आपके चरण कमल बलिहारी है। श्रीदीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। अलकपुरी जी महादेव की जय।
1: विश्वागुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेवा की जय।
0: फर्दर अबाउट द प्रेयर्स टुमारो।
1: A dál o modlitbě si budeme říkat
0: Om
1: zítra.
0: Shanti, Shanti, Shanti.

ओम श्री लखपुरी जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवनपुर जी महाराज की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर।

जय देवाधिदेव श्री देवापुरी जी महादेवा की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सामना श्री परहंस श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय। सबक मंडल की जय। Okay, one more. One more.

हिंदू धर्म सम्राट परहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परहंस श्री स्वामी महेश्वर नंद जी गुरुदेव की जय।

0: दीप नारायण भगवान की
1: जय।
0: अलकपुरी जी महादेव
1: जय।
0: देवपुरी श्या महादेव
1: जय।
0: माधव कृष्ण भगवान
1: जय।
0: ओम शांति शांति।
1: जय।